जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। पुनः चुका माफ कर दीजिए। वाहे।

विस्मित सदा कुवारी जागो तो का कहां पे आपै जागो ओट तुम्हारी रहो इन सिमरन जो जीवन बना सब जैसे अजारी खंडन को राज तुम्हारे अंत चले गोहारी।